0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: दीपा माहेश्वरी।
1: आप सभी को
2: हमारा नमस्कार।
1: कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल अच्छे हैं। और आप तो जहाँ जहाँ जाएंगी हम बस पीछे पीछे चलते चले आएंगे।
1: अरे वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि भाई क्या है ये कि जहाँ मैं जाती हूँ वही चली आती हूँ। देखो तुम यहाँ पर भी आ गई हो।
2: अब ये देखो ना, दोस्ती का प्यार है, आपका अपनापन है और सखी सहेली का कुछ जादू ही ऐसा है, है ना?
1: अच्छा।
2: जिस दिन आते हैं उस दिन बस अपनी जिस सखी के साथ हम अपने बाकी सभी सखियों से मिलने वाले हैं उनका पीछा करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, तो ऐसा पीछा तो अच्छा भी लगता है। खैर
2: हाँ,
1: जहाँ दोस्ती हो, प्यार हो, सम्मान हो, स्नेह हो, वहां अगर हम एक दूसरे का पीछा करते हैं तो वो एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो
2: और कभी कभी आप भी तो आती हैं हमारे पीछे पीछे।
1: हम तो रोज ही आते हैं आपके पीछे ख्यालों में, आपने
2: अच्छा?
1: देखा नहीं है। हाँ
2: तो आज हमें भी ख्यालों में कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा, मतलब गहराइयों में।
1: हाँ,
2: कि
1: वहां मैं मिलूंगी आपको।
2: हाँ,
1: उस मोड पर खड़ी भी
2: बिल्कुल। और हमारे सारी सखियां, हमारे
1: हाँ,
2: सारे श्रोता भाई सभी से मुलाकात होगी।
1: बिल्कुल होगी। और आज के विषय क्या है ये तो बता दें हम।
2: बिल्कुल। चलिए तो फिर ये जो दुनिया है हमारे ख्यालों की, वहां से हम चल के निकलेंगे दिल की दुनिया में।
1: ठीक है।
2: दिल की माने या दुनिया की, ये बड़ी बात हमेशा कई बार कई स्थितियों में हमारे सामने आ जाती है। दिल कुछ और कहता है और दुनिया कुछ और कहती है, उनके रिवाज कुछ और होते हैं। तो बहुत सारे संदेश आए हैं, लेकिन
1: हाँ।
2: और हम जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा वाकया भी बताइएगा कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपने दुनिया की मानी, या कहीं ऐसा कि आपने दुनिया से हट के अपने
1: दिल
2: दिल
1: की
2: की मानी।
1: मानी। बिल्कुल।
2: और यहाँ से इस गहराई से निकल के हम एक और गहराई में जाएंगे, वो है कोयले की दुनिया में। कोयला खनिक दिवस है आज, तो क्या जिम्मेदारियां उनकी होती हैं
1: बिल्कुल
2: और
1: बिल्कुल।
2: कितना ये महत्वपूर्ण और साथ में एक खतरा हुआ लिए हुए ये
1: हाँ, ये
2: वाला जो
1: बहुत बहुत
2: काम
1: खतरनाक काम
2: है ना?
1: है जिसे करना अंजाम देना बहुत मुश्किल है।
2: जी, कथा सुधा में भी हम कथा सुनेंगे, एक्ट्रेस का भाग 3 सुनेंगे।
1: अच्छा
2: तो कहानी में आगे क्या होता है ये जानेंगे, और बहुत
1: बिल्कुल।
2: सारे हमारे श्रोता इसका इंतजार भी कर रहे हैं। फिर वहां से चलेंगे बिहार।
1: बिहार? अरे क्यों?
2: आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगेगा। लिट्टी
2: जी।
1: चोखा मैंने बहुत समय से खाया भी नहीं है, तो चलो अच्छा है तुमने
2: तो
1: लिट्टी
2: आप
1: चोखा
2: वहां
1: याद दिला
2: जाएंगे ना,
1: दी
2: तो
1: है।
2: आपके पीछे पीछे वहां भी हम आने वाले हैं।
1: हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी कि वहां पर मैं आपके पीछे आने वाली हूँ।
2: ऐसा है,
1: हाँ।
2: तो देखते हैं कौन किसके पीछे आएगा।
1: और इस गीत को भी सुन लेते हैं, देखें
2: चलिए
1: यहाँ कौन किसके पीछे है।
2: चलिए।

0: तो दीपा, अगर हम आपसे पूछे ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तुम क्या कहोगी?
1: आप हमारी सखी हो, आप हमारी प्रिय हो जैसे हमारी सारी सखियां हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे ही हम प्यारे एक रिश्तों में गुथे हुए हैं, है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत ही मेहनत कश तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनसे भी हमारा रिश्ता उतना ही गंभीर है, क्योंकि हम उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं, और तभी तो आज हम कोयला खनिक दिवस पर बात भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये दिन है एक खास आज का, जो उनको सम्मान करने का दिन है। हम कोयला निकालने में उनके कठिन परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो खनन में काम करते हैं, जो हमारे देश के विकास और समृद्धि में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल दीपा, कोयला खनन कोई आसान काम नहीं है, और खनिक अपना पूरा दिन खदानों से कोयला खोदने और निकालने में बिता देते हैं।
1: बिल्कुल। और 4 मई जो कि आज का दिन है, ये मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस के रूप में। सिर्फ उत्सव ही नहीं है, मतलब एक कोई दिन

0: रखने ही दिया है, बल्कि औद्योगिक क्रांति से चले आ रहे कोयला खनन के इतिहास को भी याद करने का दिन है। ये इस जो कठिन जो पेशा है इसमें योगदान देने वाले लोगों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का भी दिन है।
1: बिल्कुल, और ये विशेष अवसर पर मेहनती श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित दिन है, जो कोयला निकालने के लिए धरती की गहराई में उतरते हैं और ये कोयला हमारे देश को ऊर्जा प्रदान करने, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण के लिए एक अमूल्य संसाधन भी है।
0: बिल्कुल, और ये दिन उन समर्पित कोयला खनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जो हमारे उद्योग और दैनिक जीवन में आराम करने के लिए इनके खनन कर इसका जो कोयले का इसका खनन करते हैं और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: और जो कोयला खनन के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी, और कोयला एक जीवाश्म ईंधनों में से एक है जो कि बहुत जरूरी है, जिससे जिसमें इसमें इसमें ना बहुत सारा कार्बन होता है, कार्बन निकलता है, तो कोयले और प्रदूषित सांस लेने की वजह से खनिकों को कभी कभी फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है और कभी कभी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो उसके प्रति प्रोत्साहन को भी
1: बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं।
0: जी, और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा खदान है जहाँ पे कि इस तरह से कोयला क्या या किसी और धातु का खनन होता हो, तो वहां आप अपने बच्चों को ले जाइए, खुद भी जाइए, देखिए सामने से कि किस तरह से और कितनी मुश्किल हालात में वो काम करते हैं। या फिर खनिकों की कड़ी मेहनत को समझना और उन्हें दिल से तो हम धन्यवाद कम से कम दे ही सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग,
0: जी
1: है ना,
0: तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होता है।

0: हाँ तो दीपा, बहुत ही सुंदर गीत था ये,
1: जी
0: और काला पत्थर फिल्म का गीत था ये, और ये
1: जी
0: फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना।
1: और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं
0: वो
1: वो
0: काम
1: रहते
0: करते
1: हैं, वो
0: हैं और
1: काम
0: काम
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: और यही बात एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे
0: श्रोताओं ने
1: श्रोताओं ने
0: लिखी है,
1: लिख के
0: एक श्रोता
1: भेजी
0: ये भी
1: है।
0: लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है, और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं, और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर कोयला मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है, और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का ये दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज विश्व आज है खनिक दिवस।
1: खनिक दिवस,
0: हाँ
1: कोल कोल माइनर्स डे
0: दे
1: इसको
0: बिल्कुल।
1: अंग्रेजी में कहते हैं,
0: कोयला
1: और
0: खनिक दिवस इसको हिंदी में कहते
1: हिंदी में
0: हैं।
1: कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की
0: दुनिया
1: गहराइयों में।
0: में
1: और देखिए ना, बात एक कई बार आ जाती है ना, दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे। है
0: हर
1: ना,
0: जगह है ये जुमला,
1: है ना।
0: हर परिस्थिति मरे भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि
1: और
0: दुनिया के
1: कई
0: डर
1: सारे,
0: से।
1: वही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं उस
0: हाँ
1: वक्त।
0: बहुत सारे खाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे

0: पर इतना दबाव बना दिया जाता है
1: जी
0: दीन
1: जी
0: दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी, बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना,
1: सही
0: और
1: बात
0: कहने के
1: है।
0: बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर ली, तभी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझ कर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए, और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए
0: जो बरसों
1: जो
0: से
1: बरसों
0: हमारे यहाँ
1: से
0: ढर्रा चल रहा है।
1: चलता
0: अरे
1: आ रहा है।
0: उसमें कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खास तौर से या कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है।
1: सही
0: आप
1: बात है।
0: ये देखिए ना, उसके सपने हैं, अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है, तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते।
1: सही बात
0: घर
1: है।
0: वाले भी कई बार, हालांकि दीन दुनिया के डर से, वो भी डर के मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना, इस दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब दिल की
0: दिल की
1: माने।
0: माने।
1: तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। वैसे हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए, या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े, तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई है, वहाँ आप बड़ों की बात को ले सकते हैं। उनका कोई पुराना अनुभव है, उससे आप कुछ सीख ले करके
0: बिल्कुल
1: अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके
0: काम कर
1: और
0: सकते
1: काम
0: हैं।
1: कर सकते हैं।
0: हाँ, मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए
1: जी
0: ना।
1: जी
0: ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर लिया, आप चाहें जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है जैसा तुमने कहा, और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपने
1: जी
0: पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं,
1: जी
0: है ना, दुनिया में नाम करना चाहते हैं, लीक से हटकर हो आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज।
1: बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है, ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि एक पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा
0: जा रहे थे।
1: देश घूमने के लिए निकले थे। कभी
0: जी
1: बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है
0: और
1: और
0: बेटा पैदल
1: बेटे
0: चल
1: को
0: रहा
1: पैदल चला रहा है।
0: है।
1: तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर के दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं कैसे निर्दय हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पर बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार की बातें, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है।
0: बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में ये गाना है ना, दुनिया का ले लो
1: ले लो
0: मजा,
1: मजा,
0: दुनिया
1: दुनिया
0: तुम्हारी
1: तुम्हारी
0: है।
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी
1: जी
0: हो गए हैं,
1: हाँ।
0: हमने विद्रोह कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें, तो आज भी कहा जाता है देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती है,
1: जी
0: उसको समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की
1: बिल्कुल।
0: चिंता ही नहीं है।
1: ये बात कहीं ऐसा नहीं कि छोटे शहर, सब जगह है।
0: सब जगह है ये, हर
1: जी
0: जगह है कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए हैं ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब
1: बिल्कुल।
0: बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना ये है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और वहीं एक और संदेश आया है, ये कहती हैं कि जो लोग दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है। उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं, जहाँ पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी
0: है। बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर हैं

0: कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले।
1: चलिए।
2: अरे
3: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
3: नहीं ते

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो
1: गया। और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले, इतनी दूर भेजोगे तो कैसे क्या होगा। पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है, जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते।
0: कितनी बड़ी बात कही है, इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते
1: सारे
0: हैं।
1: और कभी कभी कोई एक लीग से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई
0: डिसीजन लेता है,
1: डिसीजन लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना
0: वो बहुत
1: बहुत जरूरी
0: जरूरी
1: है,
0: है।
1: लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है, आप एक मौका तो दीजिए,
0: बिल्कुल
1: उसके दिल की सुनिए। अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही है तो
0: बिल्कुल
1: आप अपने बच्चे का
0: उस पर
1: या
0: विश्वास
1: उस पर
0: करिए।
1: विश्वास कीजिए।
0: तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त हैं, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है। वो
1: क्या
0: कैमरा
1: बात
0: लेके
1: है।
0: जाती हैं, घूमती हैं, दिल्ली में रहते थे वो, वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही है।
1: जी, और ये बात

0: इस अंतराल के बाद अभी सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: तो बात हो रही थी कि जहां पर दो बच्चियां होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना, शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए, बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई, वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको जहाँ सिर्फ बच्चियां होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है,
0: बहुत दिक्कत आती है उनको, माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं जो आप पर नजर है, उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की, दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा, वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम। पैसा फैसला दिल से शुरू करो, लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो।
1: सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, भाई समय समय पर दोनों की मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। जब जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए, आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए, बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल से उब गए तो हम दुनिया की सुन लें और दुनिया से उब गए तो दिल की सुने। जो सही होगा जीवन
0: के लिए, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। वही कहा ना, विवेक, विवेक से काम लेना होता है
1: जी।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है, ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहाँ दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकता है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहां दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए।
1: सही कहा आपने।
0: और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, आज कहानी है एक्ट्रेस जिसका कि हम सुनेंगे भाग 3।
0: तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी।
1: चलिए,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना,
4: दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते, उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी

0: गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे। यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
1: मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना।
0: तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही।
2: कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।
0: विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगार दान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुद्ध और उदास है। उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है,
3: उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी, कभी नहीं, कभी हृदय ने उसका तिरस्कार ना किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूं? हाँ, अवश्य बना सकती हूं, क्यों नहीं बना सकती। इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूं? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव, असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास, मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं बना सकती। आह, ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है? अब केवल उसका पदचिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पदचिन्ह।
0: रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी चार दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों

0: तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा,
1: प्रेम सत्य है, सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों न यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती, नहीं नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है, और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं।
0: दाई ने आकर कहा,
2: बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए।
1: हाँ नहीं नहीं, जरा भी भूख नहीं है। सुनो, ऐसा करो तुम जाकर खा लो।
2: देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
1: अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना?
2: अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा।
0: दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे, केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे।
1: हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
0: तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए, गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था पर कांति कहाँ? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा,
1: कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी, सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए। हाँ ऐसा ही करती हूँ।
0: तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी, फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया,
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है कुछ भी अनिष्ट हो सकता है।
0: इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा।
1: ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे, कुछ अनिष्ट हो सकता है। ऐसा करती हूं पत्र लिखती हूं।
0: वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी।
1: हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है।

0: मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रीतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे, और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना। और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधु के लिए छोड़े जाती हूं। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूं और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा।
1: ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा, उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा,
0: माझी उस पार नाव ले चलेगा क्या?
2: इतनी रात गए नाव न जाई।
0: हाँ, रात है इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा?
1: मगर दुगुनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला,
2: सरकार उस पार कहाँ जाई हैं?
0: उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना।
2: मुदा इतनी रात गए कौनो सवारी शिकारी न मिली।
0: कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो मांझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो।
1: मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा।

सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो दीपा, कहानियां तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं,
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती है,
0: हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहां दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है, समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है।
1: सही कहा आपने। और देखिए, तो एक संदेश ले ले क्या दिल की माने,
0: हाँ, वही तो।
1: है ना? तो ये संदेश कह रहा है कि
2: संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते? मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और

0: सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता

0: सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया के सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूँ, लेकिन करता हूँ अपने दिल की आवाज़ सुनकर।
1: क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की, यह तय करना कठिन हो जाता है। तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय लें। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है।
0: बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग दुनिया का अनुभव का स्टेयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून, खुशी और सुकून की हो, वहां दिल की सुननी चाहिए। जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो, वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है, लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।
1: बिल्कुल, यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की। लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभचिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और
0: बिल्कुल
1: जीवन में आगे चलते रहें।
0: बिल्कुल। अब तो हमें आगे बढ़ना है इस गीत के जरिए।
1: चलिए।

0: हाँ तो दीपा, अब हम बिहार की सैर पर चलते हैं।
1: चलिए।
0: देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ के एक होटल की कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुंच गए। क्या स्वाद था पूछिए मत, और इसलिए दूसरे दिन भी वहाँ लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए। जहाँ होटल की थाली के 200 देना पड़ता था, मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए।
1: क्या बात है भाई, अगर ऐसा पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम गेहूं के आटे में 2-3 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंथ लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि 1 कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है, जैसे दाल बाटी की बाटी
0: बनाते
1: होती है ना,
0: हैं।
1: उस तरह से
0: अच्छा।
1: उसको बंद कर देना है। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उस पर भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो धीमी आंच पर ये 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो
0: अच्छा,
1: बैंगन के लिए जो
0: हाँ
1: जाली
0: हाँ
1: रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे

0: बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए, तो टमाटर भी जैसे ही ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा
1: निकाल
0: दीजिए।
1: लीजिए।
0: इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है और ये सब चीज़ों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ, और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए कि लिट्टी के, लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चौका रखिए। चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है।
1: ये
0: अब
1: आपका
0: घर में,
1: अपना स्वाद है,
0: हाँ ये आपका अपना स्वाद है, आप चाहें वैसे इसको परोस
1: बना
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा।
0: बिल्कुल, चलिए पक्की बात।
1: तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत।
0: चलिए।

0: हाँ तो दीपा, सखी सहेली कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगी, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और
1: दीपा माहेश्वरी को
0: आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
2: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस जी मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्ते, सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस जी मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ,
1: स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। त्वचा का मामला ऐसा है पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहाँ से, कैसे, कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए।
2: त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई बीमारी हो, समझिए लीवर में समझिए छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है। और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और वो भी कुछ काम करता है। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो है ही उसका काम। तो इट इज़ गॉट अ मल्टीपल फंक्शन एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज़्यादा है। देर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है। जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा, तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लीवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो।
1: डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद इतना विस्तृत विषय है तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वही हो सकता है।
1: कोशिश करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है।
2: अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब
1: पीली
2: या फीकी दिखाई देती है, जैसे फीकी। जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है
1: जी।
2: ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही
1: नाम
2: हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देर आर अदर डिसीज जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो जैसे अल्टीकेरिया बोलते हैं, एलर्जी कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े, वो ददोड़े भी अंदर की प्रॉब्लम से हो सकती है। एंड देर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज्यादा बढ़ गया तो मलेरिया बोलते
1: हैं,
2: गमोरिया उसको ही मलेरिया बोलते, तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप, समझिए स्टेरॉइड खा रहे हो तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती है, विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है। आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है, तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा वो भी।
1: अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं,
2: दाग भी आते हैं चमड़ी पे।
1: थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते हैं लोग उसे सफेद दाग जैसा समझने लगते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। तब इस तरह का कोई पेशेंट जब आपके पास आता है तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं वो किस तरह से और क्या होती
2: है? देखिए क्या है, सफेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है, हालांकि हर सफेद दाग कुछ खराब नहीं होता, कोई भी सफेद दाग खराब नहीं होता। इनफैक्ट सफेद दाग की 3-4 वजह है, एक तो लेप्रेसी, दूसरी विटिलिगो, थर्ड फंगल इन्फेक्शन, ये 3 मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग बोलते थे उसमें जो सफेद चमड़ी आती थी, और तभी के जमाने में, पहले मैं तो बोलूँ 50

0: 60 साल 70 साल पहले इसका इलाज इतना नहीं था। ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था और
1: ईश्वर का क्रोध समझकर उसको थोड़ा सा
0: उस चीज से ये सफेद दाग सभी उसी नजरी से देखने लगे लोग अभी
1: जी।
0: वेदर इट इज विटिलिगो जो सफेद दाग की बीमारी है,
1: ये विटिलिगो को थोड़ा सा समझाएंगे।
0: विटिलिगो
1: सफेद दाग
0: ही बोलते हैं जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं उसमें, तो मेलानिन जो रहती है जो कलर बनाने की पेशी है वो कम काम करती है, बस जैसे हमारे सफेद बाल हुए ऐसे ही सफेद चमड़ी हुई, इतनी सिंपल बीमारी है वो विटिलिगो। लेकिन लोगों के नजर में वो इतनी खराब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये किसी इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलत फहमी है विटिलिगो के बारे में।
1: हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सफेद सफेद से लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो विटिलिगो है।
0: वो नहीं, वो एल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन एल्बिनिज्म अलग है, वो उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज है। पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, वो एल्बिनिज्म है, पूरे शरीर उनके मतलब पुतली भी व्हाइट है, बाल भी व्हाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफेद दाग की बीमारी जो कोड बोलते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्मल लैंग्वेज में कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो वैसा नहीं है। लेप्रेसी अलग चीज है, कोड अलग चीज है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको सफेद दाग कहा जाता है, उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं, सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। मैंने जैसे बताया सफेद बाल जैसी चीज है, उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ दिखने में वो सफेद दिखता है। और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफेद दाग की बीमारी है जो लेप्रसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है, वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
1: किस तरह का नुकसान?
0: ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लिवर में प्रॉब्लम कर सकता है, समझे स्किन में जब वो सेंसेशंस को लॉस होते तो जख्म जाता है, जख्म होता है वो बोन्स खा जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्ट्रोक के जैसे हाथ वगैरह
1: एब्जॉर्प्शन
0: गलने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाने लगती है, जगह जगह पे फोड़िया आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल
1: मवाद और ये सारी
0: टिपिकल लियोनाइन फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा, तो ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है, ये लेप्रसी के जो जंट
1: है। अब लेप्रसी का इलाज कहां?
0: लेप्रसी का इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अभी तो लेप्रसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो। ये जो लेप्रसी की जो डिसीज है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो
1: अन्यता है
0: वो उसके वजह से, हाँ उसके वजह से ये सफेद दाग
1: गलत
0: नजरों से देखा जाता है। तो सफेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफेद दाग होता है, बट लोगों को सब लगता है कहीं ये लेप्रसी तो नहीं है, बाकी कुछ भी चल
1: जो फंगल इन्फेक्शन है
0: वो भी इजीली ट्रीटेबल है,
1: ठीक होता है, लेकिन सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है?
0: बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
1: प्रॉब्लम नहीं,
0: लोगों के मन में क्या होता है ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नजरिया उस पर अलग हो जाता है, इलाज तो करेंगे लेकिन कोई कोई डर के आते हैं
1: जी जी
0: कि कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं, दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज नॉट लेप्रसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुटअप करूँ तो लोगों के मन में सफेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रसी, वो लेप्रसी तो नहीं है, करते करते सब सफेद दाग को लेप्रसी के नजरिए से देख रहे हैं, अभी जो सफेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिगो की वजह से हो वही चीज में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है। कोई भी सफेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पोर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है,
1: तो सर नजर का टीका
0: हाँ कितना भी काला दाग होने दीजिए आप, चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सफेद दाग ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है,
1: अभी धारणा
0: निकलनी चाहिए। कोई भी सफेद दाग मेरे ख्याल से अभी लेप्रसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए, और जिस चीज का इलाज नहीं होता उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जैसे विटिलिगो उससे कुछ नहीं होने वाला।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि सफेद दाग जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुष्ठ रोग कोड ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है। किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें और निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी तुरंत मैं एक निश्चिंत होने का एक और तरीका बताता हूं, कोई म्यूजिकल तरीका भी होता है?
0: म्यूजिकल तरीका तो गाना सुनना ही है, तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: कौन सा?
0: दिलवाले फिल्म का गेरुआ सुना दीजिए।

0: फारूक साहब, ये गाना अभी सुन रहे थे जब, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुन रहा था। सफेद रंग की बात कर रहे थे, ये थोड़ा गेरुआ होने की बात कर रहे थे,
1: कलरफुल हो रहा है अभी थोड़ा। यस,
0: अब मोहब्बत में तो आदमी किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है, बस शर्त इतनी होती है कि उसका महबूब उसके करीब होना चाहिए, आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हो। अब डॉक्टर साहब बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है, हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया किसी तरह का। अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ पेड़ भी होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीजें होती हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी?
1: ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं एकदम ही स्ट्रांग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज़ की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्माटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ जो फोड़ियाँ फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है, और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में है जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीज है, हालांकि हर्पीज तो अंदरूनी वायरस से होता है बट हर्पीज भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है।
0: चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं अगर ऐसी मान्यता है?
1: या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग है वो नहीं जाते थे। चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं,
0: वो नेचुरली चले जाते हैं,
1: नेचुरली चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं।
0: किस तरह का इलाज होता है?
1: इलाज राइट फ्रॉम मलम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग।
0: अब आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर, तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूं, चमड़ी जल सकती है, वो तो जल से ही तो ऐसे भी जलती है, जल सकती है किसी भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग, कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स, तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
0: तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले,
1: पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्माटाइटिस, या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो वाली चीजें जो समझिए हम कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और इरिटेंट डर्माटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरूनी चीज की, और इरिटेंट डर्माटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया, आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हमने ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो, सो दैट्स एन इरिटेंट डर्माटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज करें या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच ट्रैप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी किसी को बिंदी के जो गम रहती है जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइज की हो सकती है, हेयर डाई।
0: डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे हेयर डाई पे, लेकिन इस समय ये अब यहां हम कौन सा गाना सुन सकते हैं?
1: थ्री इडियट्स की जुबी डुबी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: चलिए ये डूबी डूबी के गाने के बाद जो आप बात कर रहे थे हेयर डाई की,
1: हेयर डाई एलर्जीज,
0: अब हम आ गए एक ऐसी चर्चा पे जो बड़ी कॉमन सी, मतलब लोगों के बीच में बहुत सी बालों को लेके और बालों की चमड़ी को लेके और फिर उससे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, और तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे।
1: ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस पे ही अटके हुए। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनिलीन डायामाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है,
0: उसके बिना हेयर डाई नहीं बनती।
1: उसके बिना हेयर डाई 99% आई वुड से, कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है
0: जी।
1: थोड़ी बहुत अभी पीपीडी

0: फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनिलिन डायमाइन की एलर्जी होती है
1: जी।
0: ये जो एलर्जी होती है इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा आंखें ऐसे सूज सकती है, फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है। किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई लाइट डाले तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है,
1: भले उसका आंखों से कॉन्टेक्ट
0: ना हो तो उसके आंखें सूज जाना, आंखों के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलेट्स है वो सूज जाना। हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलेट्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुजा रहा है, लाल हो गया है। यस बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए, टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस एलर्जी है तो पेशेंट दो तीन बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा
1: जी।
0: देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइज है, बहुत सारी अलग है।
1: और ये जो माथे का काला होना
0: ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज्यादा होने लगती है, तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी, वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए।
1: मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज मत करो।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जितना वो काला हो चुका है तो वो क्या आप ठीक कर सकते हैं?
0: वो ठीक कर सकते हैं मतलब उसका इलाज हो सकता है। देखिए ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हाँ या ना में जवाब किसी भी बीमारी को नहीं दे सकते हम लोग
1: जी।
0: हाँ बट कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे उनका कॉज हटा दिया है तो शरीर भी अपना करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू कर देता है। शरीर भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है खुद का अंदरूनी, अगर हम छेड़े नहीं तो शरीर अपने आप काम करने लगता है, बट शरीर की एक क्षमता होती है उतनी देर तक ही कर सकता है। तो हम जो है उनको असिस्ट करेंगे और वो कलर जाने में मदद करेंगे, लेकिन उसको हेयर डाई अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हेयर डाई के में भी ये है कि ये जो सफेद बाल है, अगेन इट्स जस्ट अ परसेप्शन आई फील, सफेद बाल में क्या प्रॉब्लम है अभी? तो वो भी देखने का नजरिया है सिर्फ। अभी फॉरेनर्स लोग सफेद बाल लाते हैं तो हम तो खुश होते हैं, हमारे यहाँ सफेद बाल को बुढ़ापा की नजर माने जाते हैं, मतलब बुढ़ापा की बहुत निशानी मानी जाती है। तो अगर हम वापस ये परसेप्शन बदल दे कि कल को अगर समझिए सफेद बाल की फैशन आ जाए तो डाई की जरूरत ही नहीं पड़े। वी हैव टू बी हैप्पी विथ अवर बॉडी, अवर कलर, अवर हेयर, क्वांटिटी ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, ये सब चीजें जो है नैसर्गिक है, नेचुरली दिया हुए चीज है, तो उसको जरा खुश
1: रहिए। खुश होने की बात हम और भी करेंगे, फिलहाल एक खुश होने का एक और नुस्खा है,
0: इसके लिए एक गाना होना चाहिए, डियर जिंदगी वाला, लव यू जिंदगी,
1: लव यू जिंदगी।

0: तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, जो ईश्वर ने हमें जैसा बना के भेजा है उससे प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो,
1: सब चीज सही करिए, थोड़ा एकदम डिविएट मत होजिए, और जो शरीर है उसका आनंद लीजिए। एवरीबडी इज मेड इन अ डिफरेंट वे, सभी लोग को एक ही साइज का 38 नंबर का पैंट एंड 42 नंबर का शर्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एंड डोंट बी अनहैप्पी विथ योर बॉडी, ट्राई टू बी फिट। फिट मीनिंग अपनी जो रोजमर्रा की काम है उसे करने की क्षमता होनी चाहिए। फिटनेस का आजकल डेफिनेशन अलग हो गया है। फिटनेस तो मतलब सिक्स पैक फिटनेस, शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए या बाल काले होने चाहिए, घने बाल होने, ये फिटनेस नहीं होती है
0: जी।
1: फिटनेस वो होती है जो अपने काम करने की क्षमता बनाए रहे। जो टीचर रहेगा तो उसकी फिटनेस है कि उसका बुद्धि शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो अगर सिक्स पैक बना के खड़ा हो जाएगा वहां तो उसको और कुछ पढ़ाई नहीं किया तो वो फिट नहीं रहा।
0: फिटनेस का मतलब ये है कि आप सुबह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें, अपने काम को खुशी खुशी करें। तो डॉक्टर साहब, अब असंतुलित जीवन जीता है उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा, त्वचा पे कौन कौन सा असर पड़ता है?
1: त्वचा भी एक ऑर्गन है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, और अगर हम लोग हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा। जैसे अभी लाइफस्टाइल में बोलेंगे तो बराबर से नहीं सोना, विच इज़ नाउ बिकम अ फैशन। अभी जो ड्यूटीज़ रहती है वो अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, किसी को अमेरिकन शिफ्ट, किसी को ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट, तो 3 बजे रात को जाता है और 7 बजे आता है और 3 घंटा सोता है, फिर खाना खाते हुए 2 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटा सोता है, ऐसा नहीं चलेगा। जंक फूड खाना, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, जैसे स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजों से सभी ऑर्गन्स पे राइट फ्रॉम हार्ट टू द स्किन अफेक्ट होता है। अब स्किन पे आप पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो झुर्रियां पड़ जाएंगी और फिर थोड़े दिन का परेशान चेहरा ही दिखेगा, और रिंकल्स आ जाएंगे शरीर पे, थोड़े धब्बे पड़ने लगेंगे, जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी, ग्लो चलिए। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मुझे ग्लो चाहिए, ग्लो चाहिए, उनको लगता है कुछ मलम दे दूंगा तो ग्लो आ जाएगा। पहले अंदर से ग्लो होनी चाहिए, बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है ये बात, लेकिन अंदर से नींद अच्छी रहनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, खाना खुराक अच्छी रहनी चाहिए,
0: और नीचे कालापन आ जाता है।
1: यस, आंखों के नीचे काला, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं, और पोल्यूशन से थोड़ा सा बचे, धूप से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे अपने आप को।
0: कुछ चीजें ऐसी हैं, अब कोई धूप में काम करने वाला बंदा है
1: या
0: उसके लिए फिर वो क्या कर सकता?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप, एक्चुअली अभी धूप में जो काम करता है बंदा उसके लिए वो काम ही है, तो ही इज यूज्ड टू दैट, तो उसको चलेगा। लेकिन धूप में ऐसा है ना कि फॉरेन कंट्रीज में धूप से कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, और आई वुड से पूरी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है, तो किधर अमेरिका में अगर धूप में कोई काम करता है उसे कैंसर होती है, तो इंडिया वाला बेचारा जो खुदाई करता है वो भी सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्किन बनी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसमें कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत कम चांसेस है, तो धूप में जो काम करता है उसका चमड़ी काला हो सकता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम है।
0: स्किन कैंसर, ये एक बड़ा अलग सा शब्द है।
1: यस,
0: स्किन कैंसर एक ऐसा है कि वो तो पूरा शरीर स्किन से ढका है। अब वो बंदे को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं
1: नहीं, आप किस तरह से ये क्या हो रहा है। नहीं, कैंसर शब्द सुनते ही मुझे एक डर पैदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्किन कैंसर, तो आपके मन में यही आ गया होगा कि स्किन कैंसर पूरी स्किन में फैल जाएगा, स्किन जल जाएगी एंड ऑल दैट। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। स्किन कैंसर्स आर, आई वुड से, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट दे आर द सेफेस्ट कैंसर्स। जैसे अभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, दो चीज जो है वो उसी जगह पे इफेक्ट करती है, जहां पे हुई वहीं पे

0: फेक करते हैं, मैं आई डोंट नो वेदर आई एम पुटिंग इट राइट, जहाँ पे समझिए एक छोटा सा दाग हुआ
1: जी,
0: स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा हो, तो वो उतनी ही जगह को अफेक्ट करता है, न कि वो किधर अंदर फैल जाएगा, इतना नहीं फैलता है वो। और उसका ट्रीटमेंट है कि एक एक इंच उसके अराउंड स्किन को निकाल दिया जाए तो उसके ट्रीटमेंट 100% हो गई। उसके साथ में मेलानोमास है, मेलानोमास करके कैंसर से जो फैल सकती है अंदर,
1: तो ये जो फैलती है तो किस तरह से डैमेज करती है
0: वो, डैमेज फिर अंदर गया तो लिवर में, सब जैसा हमारे कोई बोन के कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो या लिवर के कैंसर हो, कैसे फैलती है वैसे, एक बार फैल गई तो सब एक ही चीज है।
1: ओके,
0: और भी एक हाथ दो कैंसर जो काफी फास्ट फैलते हैं, बट दोज आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो स्किन कैंसर है ये फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जहाँ पे उनकी जो स्किन टाइप है टाइप वन टाइप टू, मतलब गोरी जो चमड़ी रहती है, वो धूप से बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्किन जो है धूप से बचने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ, सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन ऑन अवर स्किन।
1: विदेशों में
0: उनका जो सनबाथ लेने का आइडिया ही डिफरेंट है, वो धूप को देखते नहीं बहुत दिन तक, उनके पास पूरी ठंडी का माहौल रहता है, उनको तो क्या 18-20 डिग्री बोले तो भी गर्मी होने लगी तो आते हैं आराम से कपड़े पड़े निकाल के बीच पे सो जाते हैं और सनबाथ लेते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। ये ज्यादातर ये धूप का आनंद लेने वाली बात है और अपने आप को टैन करने की थोड़ी प्रयास चलती है उनकी, जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब गोरे होना चाहते हैं, वहाँ उन लोग थोड़ा सा रंग लाना चाहते हैं।
1: चलिए इसी विषय पे अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन फिलहाल एक सुरीली सी किरण की जरूरत है इस समय।
0: दिल धड़कने दो का वो गाना सुना दीजिए,
1: गल्ला गुड़िया।
0: हाँ हाँ,
1: तो चलिए सुनते हैं।

0: फारूक साहब, जब हम और आप बात कर रहे थे गोरे और काले की, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की।
1: यस,
0: लो हर कोई गोरा होना चाहता है और काले रंग को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो गोरा है वो बड़ा अच्छा है।
1: सुंदर दिखने के लिए मैं तो बोलूंगा कोई भी रंग चलेगा
0: जी,
1: सुंदर दिखना है तो स्किन का जो है टेक्सचर और उसकी जो क्वालिटीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन द कलर
0: इफेक्ट। तो आपके पास ऐसे मरीज भी आते होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कोई लेजर का कोई अगर कोई तरीका हो या कोई दवाई ऐसी हो कि जिससे हम गोरे हो जाएं।
1: अरे गोरे होने की तो 100% डिमांड होती है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता जो डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसको अगर मैं बोलूं ना गोरा होने का दवाई दूं क्या, वो बोलता है मुझे दे दीजिए मैं गोरा होना चाहता हूं।
0: कितने समय तक असर में रहता है?
1: जब तक उसका असर रहेगा 1-2 साल तक, तब तक वो ठीक रहेगा। बाकी जैसे आप धूप में गए और जैसे हमारी शरीर की मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन को बना के फेंकने लगी तो कलर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जो शरीर की जो पेशी है वो तो वैसे ही रह गई।
0: अलग अलग जो त्योहार आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका सीधा कॉन्टेक्ट आपके स्किन से है, रंग जो है वो आपके पूरे शरीर को खराब कर, तो ये कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां एक तो दूर करनी है, दूसरा होली में मान लीजिए इस तरह के कलर हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: होली के बारे में तो कलर नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से अभी यूज होते जा रहा है। कलर दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मैंने बताया था पहले इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उस चीज का एलर्जी हो सकता है या तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। वो जो कलर हवा में उड़ती है अंदर इनहेल किया जाता है तो लंग्स में जाके अस्थमेटिक पेशेंटों को ज़्यादा तकलीफ देगा, खांसी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, आंखों पे उठ के कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, खुजली आएगी, फिर लाली होगी और स्किन पीलिंग होने लगेगा।
0: वो क्योर हो जाता है?
1: वो तो एलर्जी जैसा है, क्योर होगा मतलब स्किन जल जाएगी, फिर वो जला हुआ स्किन जैसा हील होगा, 10-15-20 दिन लगेंगे
0: जी।
1: अपने आप हीलिंग प्रोसेस होगी, फिर दाग भी पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते, ऐसा है। जख्म जैसी बात है, ये
0: वेल्डिंग कर रहा है बंदा उसके ऊपर कुछ खास तरह की रॉड तो यूज करते हैं।
1: वेल्डिंग का तो क्या है ना, छींटे उड़ेंगे तो जलता है, बर्न्स होते हैं वो, इट इज लाइक एनी अदर बर्न्स, बट वेल्डिंग का जो बर्न्स है वो डीप बर्न्स रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, बाकी उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो एक्सटर्नल जो होती है ना वो क्योर हो जाता है, लेकिन दाग कितना छोड़ेगा वो पता नहीं है।
0: और जब बात हमने होली की है
1: तो आज तो
0: एक सज्जन है जो कह रहे हैं कि आज
1: नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, फिर तो कटी पतंग वाली आज नहीं छोड़ेंगे।

0: तो डॉक्टर साहब ये होली तो इन्होंने मना ली, चलते चलते आप अपनी त्वचा को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके सिंपल नुस्खे एक डॉक्टर जो है खास तौर पे चर्म रोग विशेषज्ञ क्या देगा?
1: आपका आपका सवाल अगर मैं वापस रिफ्रेश करूँ तो आपका कहना है कि एक हेल्दी स्किन के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? वो इंटरनल फैक्टर्स है हमारी खुराक, अच्छे से खाइए, नींद, हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो ये सब चीज़ों से अंदरूनी यू नो द स्किन इज़ मोर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नली आप पोल्यूशन को अवॉइड करिए। अभी अवॉइड कैसे करेंगे, आप पोल्यूशन वाली जगह पे मत जाइए ज़्यादा, और अगर आप जा रहे हैं बाइक वगैरह जाते हो एक अच्छे से जैकेट या
0: चेहरे पे भी कुछ
1: ऐसा कुछ कवर कर लीजिए ताकि वो पोल्यूशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। धूप ऐसी चीज है जो फोटो एजिंग बोलते हैं, धूप से थोड़ी सी एजिंग जल्दी होती है जो धूप की जो इफेक्ट है, बट धूप के प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, तो जितना हो सके उतना

0: धूप से थोड़ा बचिए, छतरी लेके जाइए, कुछ मास्क डाल लीजिए।
1: तो डॉक्टर साहब, आप ये जो धूप से बचने की बात कर रहे हैं, अब कोई अगर मजबूरी में नहीं था, छाता नहीं लगा सकता, उसे काम करना है, अब आज मुझे जाना ही है, अब मुझे निकलना है, छाता नहीं है, तेज धूप है, तो उसका कोई और उपाय है?
0: धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन एक उपाय है, बट सनस्क्रीन के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया जाए, सही टाइम तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के, हर दो दो घंटे में डालना पड़ता है।

0: तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन्स को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के हर दो दो घंटे में डालना पड़ता है, 30-50 SPF के जितना रहना चाहिए, और ये करोगे तो ही वो धूप से बचाएगा, नहीं तो ये सिर्फ एक ऊपर के क्रीम लगा के आप संतुष्ट होकर जा रहे हो, बाकी उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज कर रहे हो तो सही मात्रा में, सही टाइम तक और सही तरीके से यूज करेंगे तो वो उपयोगी होगा। और धूप से बचना ही है तो कैप्स है, हैट्स है, अम्ब्रेलाज है, दुपट्टा है।
1: दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे त्वचा की देखभाल कितनी ज़रूरी है और किन किन चीज़ों से ज़रूरी है। ये बात सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से आपने सुनी। और अब डॉक्टर साहब चलते चलते गाना सुन लें, समय तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं।
0: ये सुल्तान पिक्चर का जग घूमिया हो जाए।

0: तो दोस्तों, जग को घूमना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखिए। जैसा कि गाने से पहले डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बताई, सारी बातों के साथ अपने आप को निष्फिक्र रखते हुए मजे से जग घूमिए। और अब फिलहाल डॉक्टर साहब, आज का वक्त तो यहीं पूरा हुआ चाहता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी और बहुत सी उपयोगी चीज़ें उन्हें मालूम हुई होंगी। तो विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच। जाते जाते ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, आराम से रहिए।
2: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। बातचीत कर रहे थे अमर कांत दुबे और बातचीत का विषय त्वचा के रोग और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंधल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को